जी बिल्कुल सही। अच्छा जी बिल्कुल, मुझे मैसेज कर दे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम भाईजान, अफ्तर दे मुबारक शाह भाई संग गए मिस जी, शर्त दे आगा शो था राव वाला मिस जी, खुदा से कहना चाहे लक्षण दे आराम ये कहो खा वैसे आवाज दे सफार अजीब नेट बांधे, आई एम डॉक्टर जोया फ्रॉम डुमेल, डेरा मने ना डॉक्टर जोया डुमेला द मैसेज वो कहूँ लो या खजशी

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
0: It's 12 o'clock.
3: It's 12 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jaan Rang Aman.
4: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजाइत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
5: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
2: योर म्यूजिक, योर रिक्वेस्ट,
6: दिस इज रेडियो स्टेशन, रेडियो अमन।

तो जी हाँ जनाब, कैसे हैं आप? सब लोग ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, अच्छे होंगे आपके जज्बात, ख्यालात और एहसासात, क्योंकि आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 88.4 ट्रांक। आप लोग के साथ एक बार फिर आप लोग का भाई, आप लोग का होस्ट, आप लोग का अपना सगा, जी हाँ, आप लोग के अपने वतन का आरजे रिजवान खान आप लोग के साथ मौजूद है। तो कैसे हैं जी यार? आज ईद के इस पूर्व मुसर्रत मौके पर आप लोगों के साथ मुलाकात होने जा रही है रेडियो अमन के तवसुत के जरिए से यहाँ पे जी, और आप लोगों के साथ गपशप भी लगाएंगे, बातचीत भी करेंगे और ये भी पूछेंगे कि ईद कैसी गुजर रही है आप सब लोगों की। जी हाँ जनाब, इस शो में, इस प्रोग्राम में हम जो है ना तीन लैंग्वेज में बात करेंगे, तीन जुबानों में बात करेंगे, सराइकी, पश्तो और उर्दू। जी पश्तो शुभ खबरें कहूँ तासरा और सराइकी शुभ हाँ खबरें कहूँ, सराइकी तीन गालियाँ करे सुखवान जी। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक हो, सो सराइकी अली भिराओ भीड़ भिराओ सारे ठीक जी ठीक ठाक ही जी। सो एक बार फिर आप लोग के साथ लंबे अरसे के बाद मुलाकात होने जा रही है जी, क्या करें, मसरूफियात ही कुछ ऐसी होती हैं कि बंदा निकल नहीं पाता, लेकिन आप लोग की खिदमत में एक बार फिर हम लोग जो है ना आज हाजिर हैं, हाजिर और नाजिर हैं जी, आप लोग की दिल की आवाज हम पहुंचाएंगे सभी तक, क्योंकि ये रेडियो अमन जो है ये आपका अपना रेडियो अमन है। और उम्मीद है कि ईद आप लोग की अच्छी गुजर रही होगी। वैसे कुछ लोग तो कहते हैं कि गुजर चुकी है, लेकिन गुजरी नहीं है मेरी जान। अभी जो है ना ईद के दूसरा दिन है, ईद के तीन दिन तो मनाए ना, तो उसके बाद देखते हैं कि गुजरती है या नहीं गुजरती, लेकिन थोड़ा सा वेट किया करें ईद के लिए। बस अक्सर लोग कहते हैं कि बस पहले दिन ईद थी, दूसरे दिन गई, बस नहीं मेरी जान। आप लोगों ने ईद मनानी है, खुशियाँ मनानी है, खुशियों से बंदे का दिल जो है ना झूम उठता है। सो खुशी मनाया करें, अपने आप को खुश रखा करें और रिश्तेदारों के यहाँ भी चक्कर लगाया करें ईद के मौके पर। और जी जनाब, थोड़ा सा वेट करें कॉल्स के लिए, थोड़ा सा वेट करें मेरी जान, आप लोगों ने थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि मैं अभी अभी बैठा हूँ, थोड़ा मुझे सेट होने दें, फिर आप लोगों के साथ गपशप भी लगाएंगे, कॉल्स भी आप लोग की अटेंड करेंगे और आप लोग की कॉल्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे जी। थोड़ा सा वेट करें मेरी जान, जो भी कॉल करा है थोड़ा सा सफ़र करें, थोड़ा सफ़र करो यारा, थोड़ा तवैया निकाले सा चावन उजड़े कूँ लगभग सफर कवे ग्राना लगभग सफर कवे बोले छे सोच राख लें लड़ते दर तो सेट सकन है यारा ताब सर गपशप लगाऊ ओ दाब मात वायु छे मुझे आवाज सी कमदा कम कम जी पूरे रसीज लग गया तो क्लियर रसीज ही का न रसीज ही। और कॉल का नंबर जी वो मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है? इधर मैं तीन जुबानों में बात करता हूँ ना, तो कभी कभी मेरी सराइकी और पश्तो और उर्दू मिक्स हो जाती है, तो इस पर बुरा ना माना करें, ठीक है ना जी, क्योंकि मैं आप लोग का भाई हूँ, आप लोग अपना भाई हूँ रिजवान खान, ठीक है जी। हाँ गायब हो जाता हूँ कभी कभी, लेकिन आता हूँ, आप लोग हमें याद आते हैं तो मैं भी आ जाता हूँ। ये वो कहते नहीं कि दिल को दिल से मोहब्बत होती है ना, तो दिल को दिल से राह होती है, लव गेट्स लव, तो आप लोग के दिल ने चाहा तो हमारे दिल ने भी यहाँ से चाह के आज आप लोगों के लिए एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम ले आए और आप लोग के साथ गपशप भी लगाने का भी अरसे बाद, और एक अच्छा सा मौका भी है, एक ज़बरदस्त सा मौका भी है, खुशियों का मौका है, प्यार भरे लम्हों का मौका है, और ये जो मौका है ये मोहब्बतें बांटने के मौका है जी। और ये जो त्यौहार होते हैं ऐसे त्यौहार, ये तो हमारे इस्लामी त्यौहार है, ये हमें भाईचारे का जो है ना पैगाम देते हैं कि हम आपस में भाईचारा फैलाएँ, एक दूसरे का साथ दें, गरीबों की मदद करें, तो ये सब चीज़ें हमने करनी है, शो भी करना है लेकिन ये भी करनी है, ठीक है जी।

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू। आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजाइत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है।

0: मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: आशना अपनी हकीकत से हो ऐ दहकां जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

0: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जुकुन फयकून का मालिक है, एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: बेखबर तू जौहरे आईनाए अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांड की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: अखी सोने नुवाए
2: रातुन के म्याश दिल हज्जे
0: तासु औरे द रेडियो अमन 88.4 डांड इस्लामी नशरियात मुंग सरे उसे।

0: सुबह की पहली किरण जैसे खिलता हुआ नूर, हर पल महके महसूस हो सुरूर।
1: चेहरे की रंगत अब और भी निखरे, सबकी नजर

जी, आशिकी दिल लगी नहीं होती, तो जिनको दिल लगी लगता है आशिकी उनको बता दोगे यार आशिकी दिल लगी नहीं है, दिल की लगी और है। अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर। माशाल्लाह माशाल्लाह।

0: ओके ब्रो, लिसनर की आवाज कम है। चले जी, लिसनर की आवाज हम अभी बता दीजिएगा मेरे प्यारे राणा साहब, राणा इजाज साहब, मेरी जान, मेरे लाले और मेरे प्यारे भाई राणा इजाज साहब, मुझे पहाड़पुर से उन्होंने फॉर्म कर दिया कि तासीर भाई, लिसनर की आवाज़ जो है वो आनियर कम आ रही है। सो अभी कॉल कीजिएगा, तासु कॉल कवले सु 0304-99-25-388 बांधे, 0304-99-25-388। राणा साहब अभी मुझे ज़रा इन्फॉर्म कीजिएगा कि अभी इन कॉलर की आवाज़ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहां से? अरसलान, कहां से बात कर रहे हो? शालम से, शालम न टांग शालम, टांग शालम से बात कर रहे हैं। हेलो, कहां से, कौन से शालम से बात कर रहे हो? अरसलान टांग वाला या अपना पंजाब वाला? पंजाब वाले। अच्छा, मुझे लगा कि आप टांग से बात कर रहे हैं। किवें आले बच्चा, ठीक ही वे? माशाल्लाह माशाल्लाह, ते ठीक है, अभी भी स्लो हैं। अच्छा, मैं इतना हूँ, ये पता नहीं क्या वजह है। अच्छा जी, के पूछना चाहो बच्चा? गावण सुनना चाहना, इन दे वास्ते त मैं गावण सुना ना पोसी मिट्टा तो मैं सुना अड़े करते, तेरी आवाज प्यारी है। केड़ा गावन सुन से बच्चा? अच्छा, मेरी जिंदगी में है ये तो इंडियन गावन है, तो इंडियन गावन तो मैं ना चलेंदा रहना, ठीक है।
1: अच्छा, कोई लाना बिल्ली दाउचा?
0: केड़ा
1: लाना बिल्ली में बड़ा रहने
0: से? अच्छा अच्छा, मैं वो ला देना, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, ते अल्लाह हाफिज़ बच्चा। राणा इजाज साहब, लव यू, थैंक यू सो मच, आप इन्फॉर्म करते रहे और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मेरी जान, थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, चिकम माँ रुणा द टक वाल दी टक ची चिकम द प्रोग्राम अरवी अगो दे पारा सदाम प्लाजे छे मंसूर जन स्टोर चिकम द अल्त बतासुता दे مجوال یعنی کیسن وال چکم پروڈکٹ دی آبت تا ملاو سی خوشو اور دن کو دا خبر شکم دا دا خصوصا زخپل خویند دی پارا کوم چکم دی گرمی لوجه نا دیری پریشانی دی ٹول خویند دی واروی چے گرمی گانو چے دی ورج فیس وار شکم دا اغی چی تاسو استعمال کو کیسن لوٹا وائٹ فیس واش چکم دی تاسو لک چکم دا اغا اکشلے کوی او بالکل تاسو گارنٹی سره استعمال اول اسو او نور شان درشم. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب من میں بالکل ٹھیک، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
2: میں
0: خیر مبارک شبرا استاد، کیویں حال احوال ٹھیک ٹھاک، کیویں طبیعت سے ٹھیک ہے مٹا بیرا؟

1975 को, अच्छा 1975 को तुसा रेडियो पाकिस्तान सुनदे पे तब रेडियो पाकिस्तान ते मैं को नहीं सुना रेडियो पाकिस्तान ते नहीं सुनी बदे

0: अच्छा शबरा उस्ताद, मैं कुत ए लगदा है के तुसा केसन को इस्तेमाल कीती वदे हो सो।
1: बिल्कुल केसन पर खलील का इताबे सामान के इस्तेमाल तक पूरा है।

कॉलर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कॉल्स का सिलसिला रोक लीजिएगा और मैसेजेस वालों से बात करनी दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं दोबारा जब कल आऊंगा तो फिर कल आपसे तफसील से मजीद बात होगी। अभी सिर्फ वो मैसेजेस को मैं टाइम दूंगा जो मैसेज पे मेरे साथ मौजूद हैं। उन सभी का शुक्रिया जो मेरे साथ आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे बात होगी क्योंकि मैसेज वालों ने बहुत इंतज़ार किया। सलाम जी, सलाम, बड़ी ईद मुबारक हो आपके भी। सदीक जीशान, और सदीक जीशान के साथ और कौन है जी? अफनान है टांग से। थैंक यू सो मच टांग वालों, मनना द टेक मलगुरु तासु ढेरा।

0: सबर करें ना कॉलर ये जो मैं अम अम करने लग जाऊँ ना, ये कॉल आ रही होती है। सो किस किस दिन होता है? और भाई ये आपका नंबर मुझे आज तक याद है, जब आप 9 बजे शो करते थे तो तब इस नंबर पे आप मैसेज और कॉल लेते थे। आप भी कर रहा हूँ वहाँ तो शो कर रहा हूँ, बट वो ऑफिशियल नंबर जो है उस पर मैं कॉल्स जो हैं वो लेता हूँ। और इस नंबर, ये नंबर सिर्फ मेरे कमर्शियल शोज में ही हुआ करता है रईस। और जहाँ तक केसन के साथ मेरा शो कब कब होगा, इंशाल्लाह ये कल नहीं परसों आपको फाइनल या मैं बताऊंगा या फिर खलील भाई बताएगा, या कल वाले शो में ही मैं अनाउंस कर दूंगा कि मेरा शो किस टाइम होगा और किस किस दिन होगा। फिलहाल आप लोग मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ हूं, सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सलाम जो मसीद जल कई तासीर ईद मुबारक शाह जार तासीर नमखो दासे नमखो संग्रा मसीद जल के चे आई वैसे नमखो दासे मकर कवे चे पो नजर नशे शो सो और सम मजा को ओके जल कई आधा को डेरा शखा बरादो चे तो था मजादर को काजी चलिल था मिर सारा। अच्छा सबर करें ना कालर, मुझे जल्दी जी मैं मैसेज अगर जल्दी पढ़ूंगा तो फिर कालर्स को मौका दूंगा, अदरवाइज ये आज के लिए इतना ही होगा। काजी साहब मेरे साथ हैं, लिखते हैं तासीर भाई ये शो अच्छा ये शो केसन का है। यस मुझे पता है ये केसन का है और मैं केसन का ही शो कर रहा होता हूँ। देखिए परमानेंट ही मैं कर रहा हूँ, परमानेंट ही मैं केसन का शो अभी करूँगा इंशाल्लाह। कब बोल रहा हूँ, ओहो चलें इट्स ओके डोंट वरी। बड़े बड़े शहरों में इस तरह छोटी छोटी बातें होते हैं। कल शहर यार सब्र करें भाई सब्र करें, मैं आपसे बात करूंगा, वादा है कल करूंगा, बात होगी आपसे शो के बाद ही क्यों ना हो, आपसे बात होगी आज बेफिक्र रहें, वरना मैं 50-52 वाले आपको शो के बाद मैं खुद कॉल करूंगा। डोंट वरी अबाउट एवरीथिंग तासीर भाई अब बात करेगा। कल शहर तेरे एक शख्स मिला है, कल तेरे शहर एक शख्स मिला है जेरा मन तकदीर रोंदा हा हसी हाथ विच खत के संग दिल दा पढ़ पढ़ तहरीरा रोंदा हा कदी बैवें दिन हा खाक उते वत मार लकीरा रोंदा हा जामी कह दी तांग दे विच चम चम तस्वीरा रोंदा हा। सलाम लाला जी मुबारक शाह सी तैन जामी और तो सिद्धो सी तैन जामी कितु कुछ गाल करें दे पावे अच्छा लिख देवे अच्छा लिख देवे ठीक है जी 50-52 वाले चले आपसे बात कर लेता हूँ, आपने मुझे छोड़ना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
1: छोड़ कौन छोड़ मेरा क्या
0: जी अलाओ सही छोड़ ही
1: देना मोहम्मद शाह पहले मुलाकात कितनी करी
0: अब मैं आदा मैं मेरे दिल आदे तवाकु गले लामा तवाकु गले लामा ते वत मोंडे ते बिलावा तवाकु गर्मी है अच्छा अच्छा अच्छा चलो मैं दुआ करें ना जो अल्लाह करे शोरकोट इच बारिश आ वने ते डेरे इच बा वने
1: दुआ करो बारे ले पवे ना खडा मौसम ठीक है जी
0: वीरो ने दुआ करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत मेहरबानी वीरो ओके जी इन्होंने मुझे छोड़ना था नहीं तो ये मेरी मजबूरी थी। अच्छा ये मैसेज आया हुआ है लेकिन ये मैसेज जिसने भेजा है ये सर आपको खुद भी समझ नहीं आएगा। ये वाला भी इसी तरह है, आपने बिल्कुल सिर्फ शामिल होने के लिए मैसेज किया। तासीर भाई नो सॉरी कॉलर्स रोक लो, कॉलर्स सब्र करो। तासीर भाई ये मैसेज आप दिल में पढ़ें भाई

ठीक हो गया जी, जो मैसेज दिल में पढ़ने वाला था वो दिल में पढ़ लिया, और आप बिल्कुल, आपने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है। इस पे आप मुझे याद दिला दीजिएगा जब मेरा 8 से 10 वहाँ प्रोग्राम हो 96 पे, तो फिर मैं वहाँ तफसील से इसका जवाब दूंगा। ठीक है जी मेरी जान, बिल्कुल परेशान नहीं होना। साथ रहे हमेशा रहने वालों का, साथ रहे हमेशा साथ रहने वालों का, मुकद्दर से मिलता है चाहने, मुकद्दर से मिलते हैं चाहने वालों का, और तन्हाई में रोते हैं लोग दुनिया से चुप कर, कभी पूछा हाल मुकरने वालों

0: Amerika. Salam, salam. It's me, Zoni. Show is very nice. Thank you so much, Zoni, for message. और अगला किसका मैसेज है? चलो जी, छोटा छोटा ड्रोन मैसूद फ्रॉम पहाड़पुर. भाई ईद मुबारक, ईद मुबारक. माँ दे वकड़ कसम मात करो, मुस्के मुस्के राता के दे खपला देखड़ा माँ. ओए होए होए होए, लिसनर्स की आवाज नहीं आ रही अब. ओके हैं मास्टर फतेहुल्लाह साहब, मास्टर साहब थैंक यू सो मच. तासो हाँ शिरकत वो कराए मास्टर प्रोग्राम चे शामिल असली. तासो हम शुक्र गुजार या छे. तासो हम रालो मास्टर मुखबरे उकड़े आओ रालो. नो नेक्स्ट मैसेज है मेरे साथ. ईद उल अज़हा मुबारक मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को दिल की गहराइयों से. ईद उल अज़हा मुबारक, खैर मुबारक. दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल इस मुबारक दिन के सदके आपकी तमाम जायज़ दुआएं इबादत और कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. फतेहुल्लाह मास्टर साहब थैंक यू सो मच. मास्टर साहब अल्लाह दे खुशहाल रहा. भाई नंबर बार बार बताएं. अच्छा नंबर बार दो दफ़ा मैंने नंबर बताया, तीन दफ़ा बताया ना मुझे जो याद है, तीन दफ़ा. आई होप इससे ज़्यादा नहीं बताया होगा. तो माशाल्लाह आप लोगों की लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, फिर एक घंटा कम पड़ जाता है. गरा हयात जिला टांग से आसिफ बलोच मुस्तफ़ा खान थैंक यू सो मच. तो आप एक दफ़ा जब बता देता हूँ तो नोट कर लिया करें. एक मैसेज खाली भी आया हुआ है, उनका भी शुक्रिया. रियाज फ्राम डेरा इस्माइल खान, प्रोग्राम बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच रियाज साहब. आई एम मसीदा जल गई प्ले का रियाज अरमानी मसीदा जल गई रियाज अरमानी वक्त ख़त्म शुभ इस द प्रोग्राम वक्त ख़त्म शाह रियाज अरमानी सबूला गुम शाह. अस्सलाम वालेकुम तासिर भाई जो दे प्रोग्राम उर्वस वफा बलबन शाह वफा बलबन वेलकम टू तह आया. आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे सॉन्ग चला देना. आपको ईद मुबारक. आपको नईम खान पाक आर्मी डेरा इस्माइल खान से ड्यूटी पर मौजूद हैं. थैंक यू सो मच सर, लव यू. और भाई फिर वहाँ पे अगर इसी नंबर पे मैसेज कर दूँ. नहीं ये नंबर जो है ये अभी बंद हो जाएगा. शो जैसे ही मैं ख़त्म करूँगा, वाइंड अप करूँगा, तो इसी के साथ मैं पहला जो काम करूँगा वो ये नंबर ऑफ करूँगा. ये सिर्फ मेरे कमर्शियल शोज़ जो होते हैं उनके दौरान या उनके लिए मेरे आन रहता है. उसके अलावा ये नंबर मैं ऑन नहीं रखता, ये फिर मैं बंद कर देता हूँ. ठीक है जी. सो थैंक यू सो मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन. आप सभी ने किशन को इतना प्यार दिया, किशन के हवाले से बात की. और आज दूसरा दिन एज यूजुअल कल जिस तरह मैंने बात की कि सिर्फ मुझे आपका फीडबैक चाहिए, और आज भी फीडबैक लिया. और कल जब शो करूँगा तो जो न्यू लिसनर हैं जो रह गए उनके लिए नंबर अनाउंस करूँगा. और मैं मेरी ख्वाहिश यही होगी कि मुझे वो लोग सिर्फ कॉल और मैसेज करें कल भी, जिन्होंने आज नहीं किया और कल भी नहीं किया. ईद के पहले दूसरे दिन जो लोगों ने फीडबैक नहीं दिया वो ईद के तीसरे दिन ज़रूर अपना फीडबैक दे. और सिर्फ वही लोग कॉल करें मैसेज पे. अगर हाँ ओल्ड लिसनर जो पहले मैसेज कर रहे हैं वो कर मैसेज कर दें, इट्स ओके, डोंट वरी, मैसेज कर सकते हैं. लेकिन कॉल पे सिर्फ नए लोग आया करें. ये इब्तदाई तीन दिन मेरे साथ इस तरह आप चलें. इंशाल्लाह फिर जैसे ईद के दिन ख़त्म होंगे खलील भाई आएगा. और खलील भाई के बाद जब मैं परमानेंट ये शो शुरू करूँगा, परमानेंट केसन का शो शुरू करूँगा. ये प्रोग्राम से मुराद यही है. काजी जलील साहब मेरे नुक्ताची हैं आप, लव यू सर, थैंक यू सो मच. क्योंकि जब वो एक शेर है ना ऐप दिन रात निकाल, क्योंकि जब ऐप निकल जाते हैं तो ओनर बचता है. तो सर आपका शुक्रिया. सो जब मैं अपने रोज़ाना की बुनियाद पर जो मेरे प्रोग्रामात होंगे, आई थिंक फ्राइडे सैटरडे और संडे ये तीन दिन, या फिर सैटरडे संडे ये दो दिन. सो इस तरह प्लान कर रहे हैं. जब मैं प्लान कर लूँगा या खलील भाई प्लान कर लेगा, या तो मैं बता दूंगा या खलील भाई आपको बता देंगे. सो देन हम फर्दर एक एक प्रोडक्ट पे बात करेंगे. और ज़्यादा खलील भाई आपको प्रोडक्ट के हवाले से इन्फॉर्म करते रहेंगे. मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको फीडबैक लूँगा, मुझे फीडबैक लेते हुए मज़ा आएगा. ठीक है जी. सो लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें. जा रहे हैं, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्यार बांटें, मोहब्बतें बांटें, नफरतों से खुद भी दूर रहें और अपने प्यारों को भी दूर रखें. अल्लाह हाफिज़ व नासिर. पाकिस्तान जिंदाबाद.
1: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. Welcome to Radio Aman 88.4. Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
3: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. Aya staso p vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzegi vikhtan mo wadan kavi ya mo vikhtan matigi Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Hum staso da faradi. کم چی ستاسو دی ویختو خشکی خارخ پا مکمل توگ ختم بی نو بلکل جی هم اوز زان لانتخابو کی زمزم هیر شیمپو اند زمزم هیر آیل چی هایست مو یو فدوشی نو دی ملاوی دو پتا یاد ساتی فرانتیر فرنیچر چارفای نایلون مار مد مقابل گلی گلاوی فم تانگ سیٹی رابطه نمبر 0343-912-1745
6: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
7: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क

0: जी साढ़े स्टूडियो का नंबर है 09038511488 गाल मुहाड़ कर सकते वे ते देखते हैं अनेक सारे नाल टाइम कॉल के उत्ते कौन मौजूद है ते वत गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम।
0: प्रोग्राम इस खुशामदीद सही मेरा ख्याल है कॉल ड्राप ठीक है सिग्नल आना मसला है ते वला देखदे रहेगा सारे नाल कौन ते कितो गल करेंदे पण ते कोशिश कीती करो नेटवर्क दी रेंज जरूर रह करो। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम जनाब अतौला बलोच साहब तू मुदा करबाद स्टूडियो से हमारे खुश आमदीद सब बिस्मिल्लाह सब बिस्मिल्लाह ईद मुबारक।
0: सही सब तो पहले तो तुआकू ढेक ढेक ईद मुबारक कुर्बानी मुबारक लाला नेमतुल्लाह रही साहब बड़ी मुदत दे बाद तुम्हारी आवाज सुन दे पे
1: अलहमदुलिल्लाह
0: जी बस जरा कोई अल्लाह सही की तरफ फर्ज अदा कर दिता से बस तुहाडी सारी हुण मुहब्तां दे विच बैठे हां तुसा दे साथ तुहाडी ईद कीवें गुजरी है
1: जबरदस्त अलहमदुलिल्लाह तौला करो ते जिने जिक्र कीता ने कि कुछ लोग गरीब महंगाई दी वजह नाल रह जान मैं तो ये दुआ करया ना अल्लाह पाक ने ये दुआ करा दी रे रह जान गरीब दी वजह कारण महंगाई दी वजह कारण आं दी ईद अल्लाह ताला उना को डबल देवे ट्रिपल देवे त्रै त्रै कुर्बानियां करन रब्बिल आलमीन ने कलकत्ता दी कमी कोन।
0: आमीन आमीन आमीन बड़ी खूबसूरत दुआ की थी है ते हुन मसला ए भी है जो बहु लोग एक बैदी देखा देखी भी नहीं करें दे।
1: जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं गाल
0: है। हां ते तू सारी की में चंगी गुजर गई सई
1: अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर के लिए चंगी लगाया ते हालात ने ते अदु ताला खैर करे।
0: आमीन आमीन वा डॉक्टर साहब मना दा नहीं कीता जो गोश्त

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station.
3: रेडियो अमन।
4: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू। आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें। डॉक्टर जैन को ऐसे साफ करके ताजगी देता है, सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
0: You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.

0: कमी कोनी
1: अच्छा मैं एक तलक दे रहे एक देहात दे नाल है तो मेरा देहात दे भी तकरीबन 500 घर हो सी अते इवें घर ना हो सी जेन विच दो मोटरसाइकिल दो त्रै टच मोबाइल ते फ्रिज ते वीसीआर ते ए नो होवन वत किवें महंगाई है मैं कुदरत तो समझे सो
0: हां बिल्कुल बस ये गल बिल्कुल तेरी मैं तारो सलूट करना के ओ होन मोटरसाइकिल 125
1: जी बिल्कुल सही
0: फ्रिज तकरीबन जमीना जानवर एक एक जानवर अगर बकरी कुटी चवन 17,000 दी होंदी है लेकिन
1: दोस्त रुसा मनावन गए टूर के या वो आया कदम वाकिया पेश थी ईद त्यारी वाला
0: जी जी मैं आपने इसे नजरिए दा जोशी साहब ने जान दी तारीफ ना करें लेकिन माफी मंगन जरिए बड़ा अच्छा तोहफा है अल्लाह दे तरफों बहुत अच्छा तोहफा है अगर माफी मंगी हो जाए तो माफी मंगते रहने हैं लेकिन आज तो नहीं मैं देखो कोई माफी मंगन नहीं आया मैं गया
1: माशाल्लाह सुभानअल्लाह बहुत ही खूबसूरत गाल है बहुत ही खूबसूरत गाल अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं एक इंसाफ वाले को बहुत पसंद करना अते एक जरा माफी मंगदे बैद कोल मैं उको बहुत ज्यादा पसंद करना
0: हां जेरी पहल करने जाने जी जल्दी करने जी यार मैं माफी मांगा चा अल्लाह ताला उको पसंद करने वा तू दे दूसरे नंबर ते उको पसंद करने जेरा माफ करने जा
1: बेशक
0: अगर जेरा माफ नहीं करेंदा तो ओ अंदर ही जो गाल रखी पियोंदा ओंदी कोई औकात नहीं होंदी।

तू सब बनाया के घर आला तू सब नौ बना दे अल्लाह दे बंदे इधर जो आटा जाले को छुट्टी।

0: सारे मतलब इतना जबरदस्त तुसा को याद हो लिया जिस तरह का आवाज कोई तुसा को पता लग लिया कि ये खिलानी शख्सियत है।
1: काले काम आया दिल उते लिखा खड़ा है असमत दा नाम आया। टाइम है बहुत घट ते गन ले सो अमीर नियाजी दा
0: जी जी अमीर नियाजी दा जो जबरदस्त आवाज है अमीर नियाजी दी जो जी सर मैं तो खुद तो गो आवाज हम दी जरा ना बांध
1: मैं कोशिश करे ना अगर मैं को अमीर नियाजी मिला तो मैं को नप के आने ना इंशाल्लाह।
0: जी जी बिल्कुल सारी गो मेहरबानी होती है अगर प्रोग्राम से ज्यादा मुझी है तो बाद इस नजमान खतर को आके क्या वेली मतलब है अगर सुना
1: गी जरूर जरूर जरूर जरूर अमीर नियाजी पिया तबिया सी अच्छी आवाज मेरी भरा दी बम घटा दी पई है
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह जो सी साहब बस सिग्नल ना मसला हो रे क्या वाले सिग्नल फुल थी ने ने तो क्या वाले बात घट होने ना आवाज घट सी है
1: बहु मेहरबानी खान कह यार दोस्त को ईद दे हवाले नाल खसूसी पैगाम दे उचा
0: बस तकरीबन यार दोस्तों दे शमूलियत दे नाल ही मतलब जितने सारे लिसनर हैं ना गैर लोग इन मतलब सुनने वाले इन नौजवान इन उनको ए रिक्वेस्ट करे तो के ओ अपने घर दे भी जेरे मच्छर इन बिरावा छोटे बिरावा को मना करन मोटरसाइकिल भी इतने तेज स्पीड में चलावन ते खुश
1: ठीक है जी बहु मेहरबानी बहु शुक्रिया असमत अमान साहब
0: ओके जी शुक्रिया।

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: Your music, your request.
2: This is radio station, Radio Aman.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
0: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
4: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज़ है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज़ है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: ओके सी नेक्स्ट कलर ऑफ द शो. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम. यजमान बेहतर है. शजूर बराबर
0: है. शजूर बराबर है. सी वक्तों ने मिसेज़ जोनों मशहदी. वाह
1: सुनिश्चित बराबर है. शोरी है जिसे तो हमें पेज ना स्टेज कटी हो रही है. तो कटी
0: है. राज़े राज़े. हाँ टाइम रस रचती हूँ. राज़े हाँ शाबाश. जी जी राज़े. राज़े राज़े. बीड़े कवाई शाबाश.

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? आप फिक्र छोड़ दें क्योंकि आ गया है.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: Eighty-eight point four.

केसर मोबाइल जोन मंगल मेला मलिक इलाज मार्केट के तमाम प्रोडक्ट मौजूद है। केसर मोबाइल फोन द मोबाइल दुकान दे पर मंगल मेले की मलिक इलाज मार्केट की सही द्वेम दुकान चिकन दे वजीर की लिखे दे दस रहूम चिकन दे तमाम प्रोडक्ट मिलाई की सही।